थोरै नेपाल ख नेपाल भाषीय समाचार जे उपेश पाखिना दिशा थौ नेपाल सम्बत चिन्छ सौपिखुद अनलागा सप्तनी सभामुख डोल प्रसाद अर्याल कानुन देकेबले सुङ्गुली तय सरकार दुधी छप्प जुइमा धैदिगुदु अन्तर्व्यवस्थापिका मञ्च मिग टिकापुरे गोसा गोगो अन्तर्व्यवस्थापिका त मुजिया सभामुख अर्याल संगीता छेलेबुले छप्प जुइमा धैदिगु ख कानुन या छेलेबुले हेमागु वर्ग कानुन देके धुङ्का तिनी थुइगुली हात्या बोलङ्गु वेक्ल निक्ना दिल सभामुख अर्याल संयता या सिंह दरबार या अधिकार गाँ गमे थेङ्गु धासा तबी आतकन मथेङ्गु निक्ना दिल अथे त मुजे राष्ट्रिय सभा नाय नारायण प्रसाद दाहाल सङ्घ माकथ कानुन देके मफुगुली प्रदेश हो स्थानीय तह या त पङ्ग जुगु तयादिसे संवैधानिक अधिकार नाप प्रदेश हो स्थानीय तह या त ज्या या त लकस पीमा नेतना दिल नाय दाहाल जनता भावना या त क घना दिसे लोकतन्त्र या त बल लागे त सङ्गुली तह या भूमिकामा धैदिल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सभापति रवि लामेछाने युग ब्युगु पालयात पुङ्केमा धैदिगुदो मिग निसेन ह्यागु पार्टी या जिल्ला त मुजे या सन्दर्भ वेक्ल सामाजिक सञ्जालले रासोपा आज वैकल्पिक शक्ति जक मजुसे दे या नेतृत्व याइगु सक्षम रान्तिक शक्ति जुग्ली पार्टी या त समावेशी व बलाके मागु खे ब ब्यादिल सभापति लामी छाने जी या त जी या मागु इले संगठन त ब्याकेगु इले जी मदैला धका ठिकेगु प्याची मुखु धका कुखिना दिल मतदाता या विवेकको पार्टी या फुक्क दुज या समर्पण पार्टी सुथा लागु नेता दिल सभापति लामी छाने त मुज्या व त मुज्या जग मुजुसे थुकी नाय लिगु व पार्टी त नुहुँदा जीवन बिगु ज्याजोनो जुगु नेतना दिल रासोपया मिग सिन्हेगु व थौ निगुगु जिल्ला त मुज्या ज्याचुङ्गुदु सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल्सिना दे नुगु रान्तिक संस्कारे न्हने न्याना चोङ्गुली पुलाङ्गु हे रान्तिक शैली लिच्छा मोजुगु खेप ब ब्यादि कुदो राष्ट्रपा धादिङे नापङ्गु जिल्ला त मुज्या उलि ज्या ज्याजोसँग वेक्ल थथे धैदिगु ख नागरिक सेवा प्रहा या त भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व उत्तरदायी देखे त सरकार केन्द्रित जुगु नेतना दिल मिगहे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा नुवाकोट या नापाङ्गु जिल्ला त मुज्या उलि ज्या यनादिसे संचार मन्त्री डाक्टर तिमिल सिन्हा मन्त्रालय व सरकारी निकाय जुइगु सेटिङ विकृति व बिचौलिया तन्त्र या लिचो नङ्केगु झोले दुगुन नेतना दिल भारत या ग्वाली 2072 साल या भुख्या लिपा पुनर्निर्माण ज्याजो कथन हे निगु स्वास्थ्य संस्था व चिनीगु सांस्कृतिक सम्पदा परियोजना भर्चुअल रूप लागुदो भारतीय औपचारिक भ्रमण दिमा परराष्ट्र मन्त्री सुशील खनाल या त मिग भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशङ्कर थो परियोजना लल्हादिगु ख अथे वेकपी दथी निगु मिगहे भारत व नेपाल राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली इन्टरफेस दथी सीमा पार व्यक्तिगत रेमिटान्स या त अपुके त जोड लिङ्केज मङ्का कथा उलिज्या यनादिगु विदेश मन्त्री जे शङ्कर सामाजिक सञ्जालले नेतनादिगु ख अथे वेकपी निम मन्त्री दथुई मिगहे नयाँ दिल्ली डिजिटल इन्डिया भाषिनी व काठमाडौँ विश्वविद्यालय भोइस फर्स्ट भाषा अनुवाद प्लेटफर्म या नीति राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्वनिर्माण या त सम्झौता कालबिल जुगुदु परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल नेपाल भारत दुई या स्वाप या त नुधा या त थपी तयार दुगु नेतना दिगुदु भारतीय च्यानल एनडिटिभी नाप विशेष खलबला यनादिसे वेक्ल नेपाल व भारतदुती खुला सिमाना जुसा तबी सुरक्षा सरकार या त आत्मसात यागु ध्यादिसे मन्त्री खनाल निगु दे या बहुआमिक व दुनुग्ल यो स्वापु या त व्याकेमा धैदिल मन्त्री खनाल व्यापार ऊर्जा पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्य प्रविधि व स्वापु या त व्याकेमा आगु खेम ब्यादिल वेक्ल नेपाल
रेलमार्ग त व्याकेगु शैक्षिक संस्था विकास व प्रविधि विस्तारेमा कथा ठोस सहकार्य नीति समिति जुइमागु बङ्गलादेशे नेपाल मत यङ्केगु इले न्याप्ने भारत ग्वाली याइगु पलसा पङ्कादिल थोयदुथी भारत औपचारिक भ्रमणे दिम परराष्ट्रमन्त्री सुशीर खनाल व भारतीय जनता पार्टी विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर विजय चौथा वाइल दथुई नु दिल्ली नाप्लाको ज्या जुगुदु नाप्ला ज्या वेकअप इन्दोति निगु पछिए स्वप्यात तब्याकेको पार्टी पार्टी व जनता जनता दथुया स्वप्यात क्वाटिकेको विशेष सहल जुगु नु दिल्ली दुगु नेपाली दूतावास धागु ख यही महानगरपालिका शैक्षिक सत्र 2083-84 नीति कक्षा एघार व बाह्र छात्रवृत्ति नीति नापाङ्गो थलखे सोधो नेस व श्री न्याम विद्यार्थी या ना सिफारिस यागुदो कक्षा एघार व बाह्र अध्ययनयात छात्रवृत्ति लिएको परीक्षा थथे ना धल पिथङ्गु परीक्षा समिति या कोजी नमराज ढकाल धाइदिगो ख लियोपिङ विद्यार्थी पिन्स पौ जुना जेठ 27 गते दुने कोचनातो शिक्षण संस्था ने अनिवार्य रूपमा भर्ना जुइमागु खे वेक्ल ब्यादिल थुसी महानगरपालिका दुनिया सचिव पी न्यागु शिक्षण संस्था या नीति पेदो च्यास व नेगु कोटा कोचनातोगु ख स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता बाजारे मो खनिदौगु वास या आपूर्ति व्यवस्थापन या त अपिकित उज ब्यादिगु दु औषधि व्यवस्था विभाग या अनुगमन लिपा वेक्ल क्यान्सर नाप तिथि वास मो मया त उज ब्यादिगु ख मन्त्री मेहता सरकार निशुल्क इनेगु वास व स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत बिगु वास या गुणस्तर पर्सिन या त ब बि त उज नाप ब्यादिल वैदेशिक लजगाले बालागु तलब खेना ठगे यागु डोपने प्रहरी निमसित ए पाखे जोङ्गुदो ए महानगरपालिका तिन चुनिमा लक्ष्मी थापा कार्की व बुढा नेलकटा आठ चुनिमा प्रिया बानिया त नेपाल प्रहरी जोङ्गु ख लक्ष्मी ग्रिस छे तक्का छम पाखे चिन छगु लाख नियेदो दा कागु धासा प्रिया जापान छोयाबी थका छम पाखे निगु लाख कया पिसु उना चोङ्गु दोपने प्रहरी जोङ्गु ख जो पिन्त माकत अनुसन्धान व कारवाही नीति वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचल ए छोगु प्रहरी धागुदु जुम्ला हुम्ला जुया मानसरोवर व कैलाश दर्शन याइपी विदेशी तीर्थयात्री अफुया चोङ्गुदु लिपाङ्गुन हि कैलाश मानसरोवर दर्शन या त उनीपी भारतीय धार्मिक पर्यटक अफुया चोङ्गु ख वैशाखे सुनसान खनि दुगु सिमकोट विमानस्थले जेठ निसे पर्यटक कोया चोङ्गु दु आतक भारतीय व मेमेगु दे या निडो नेस व पिन हेम पर्यटक हुम्ला थेङ्गु दु खुसुबा या पङ्गल दिना चोङ्गु दिक्तेल चकुवा भन्चेङ सडक न्यागु दु दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका आठ बहुलिङ एप कु खुसी वगु खुसी बाल पङ्ग जुगु ख मध्य पहाडी लोकमार्ग लागु डिक्तेल चकुवा भन्जान सडक जेट 22 गते वगु वालिपा पङ्गले लागु ख जिल्ला प्रहरी ज्याकु खोटाङ्गा सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक निराजन बस्नेत थैदिगु ख इरान कुवेत व बहराने अमेरिकी अकडाया क्षेप्यास्त्र केको गुदो अमेरिका इरान या हर्मुजे आक्रमण या धुङ्का अरब राष्ट्र दुगु अमेरिकी अकडाया इरान आक्रमण यागु इस्लामिक रेभोल्युसनरी गार्ड धागु ख इरान या विदेश मन्त्री अब्बास अगराची अमेरिका लेबनन या त न्यने केना नापहे सहमति जुइमागु लिथ्यागु वेक्ल कनादिल लेबनाने अमेरिका व इजरायल आक्रमण याना चोङ्गु दुधासा हर्मुज चालिगु अवस्था मोजुगु विश्लेषक मिसे थाइदिगु दु रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की नाप तपेङ्क खलबेला या त छुन यी मवगु थैदिगु दु युक्रेन राष्ट्रपति जेलेन्स्की ल्वापु कोतले त तपिङ्क सल या त प्रस्ताव नाप पौ छो सातपी छनु लिपा सेन्ट पिटर्सबर्गे गोसा गोगु ज्याजोस पुटिन अथे जुइ त यी मगु धैदिगु ख पुटिन शान्ति सल नीति क्वाटुको सहमति जुसा जक नेता स्तरे नाप्ला फैगु धैदिगु दु जेलेन्स्की पुटिन या लिचोल रुस हाक्न ल्वापु या लपु जोना चोङ्गु
यत्ना दिल कोलम्बिया यत कोइला खानी तजना नेम मजदुर सिगुदु स्थानीय सञ्चार माध्यम कथम बिहिबार खानी ग्यास मुना मुगु धागुदो राष्ट्रिय खानी निकाय छाक्या त दुवाले त मा कथम अनुसार यागु धागुदु उत्तरी नाइजर सरिया सहारा मरुभूमि यात्रा एना चोपी ल तोने मखना हे ममुनु त सिग्दो गाडी लि सेनी ढुङ्का यात्री पिन्छ ल तोने मखना सिगु सरकारी अधिकारी पिन्छ धागुदो गाडी निय निम मध्ये निमेषित जक उद्धार या त ता लागु ख थौ कोशी बागमती यो गण्डकी प्रदेश या हिमाली वा पहाडी लाग्या मो थासे वा मध्य प्रदेश नाप हिमाली लाग्या छगनीको थासे न न्याना मल कुटुङ वैगु वा वैगु च्वापु कुवा वैगु धागुदो मधेस बागमती गण्डकी लुम्बिनी वा सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लाग्या या छु थासे आफ्न ता नोइगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागुदो थौ सुनिङ ले नि गुगु निसे सुई छगो डिग्री सेल्सियस क्वाज लुइगु तुकमा यागुदो थौ सुते न्याता इजुया निगु मिनेटे लुगु सूर्य शनिले नेता इजुया न्यागु मिनेटे बी नेपाल भाषी बुख कोचाल शुभ्या।

सिचुसे चोङ मतिना जना वै गुदु झासन लसुकुसादु ह्युपा हगनुग सच्यासले छित दासे निनामी बाजु मेजु पि छिसे सिथो ज्याजो आइतो बापति कंसुते सिया जिता इजुया चिन्छता इतक अथे दैगु चिता इजुया झिगु मिनेट निसि चिन्छता इतक पि न्यागु मिनेट तक छिगु निहने ओ अले थो ए ज्याजोले थौ न जि छित पहा कथ धागुला छिगु छुदागु छिगु नुग ख नेने ता ए जि हथा चाय वै गुदु उके अवश्य न झासनलस कुसे न जना त तानु से चङ्गु ल कसया त लुमुसे चङ्के अलि लुमुसे मय पिन्ता सिचु से चङ्के नु दासे निनामी बाजु मेजु पि थो ज्याज विशेष जिन ध्यामा छिन सी धुङ्कल अले मसु पनि गुनि ति दास थो आइत बापति कसु त सिया जिताइल निसिन छिन्छ त यतक वै गु ह्यु पा गुनु ग स ज्याजो क अले थो ज्याजो त छिस माया मति नयाँ न 98.103 मेगा हर्स नेपाली अङ्क चुना निना दि फु धासा छिस हलिनी अङ्क चुना निना दि गु खस यदि नेना सुना दि गुदु स उके नि तिन छिस www.radionepal.gov.np/radionepalonline वो रेडियो नेपाल या फेसबुक पेज पाखे छिस हलिनी अङ्क चुना निना दि फु सोया दि फु निनामी भाजु मेजुबी थे ज्याजुले थौ जी वया चुना गुदु प्राविधिक पासा उत्तम पाण्डे नापा जी रुबी श्रेष्ठ अले थो ज्याजो या त छिस मायामती नयाँ फोन याना दिगु ख स फोन ल्याख 42/1121/42/736 अले थौ जी धासा झी पास पिस मे लिगु है जी छिक पिस ल्यागु मे झै जे न्याङके फोइमकु छ दस जी छु मे ल्या हयु दु वोजक न्याङके फोइगु सिस्टम दु वो सिस्टम या कारण या न वो प्राविधिक कारण या न छिन धागु मे न्याङके त जित भच्चा थाकु छ दस भाषा यु कारण या न झुल अले मेगु झै छौ कारण न थन चाहिने छु मे ल्या हल वो बाहेक मेगु न्याङकेको सिस्टम नम्बर दु यदि भाषा थुमा जित प्राविधिक भाषा लागु खस वो एक्ला दास छिगु भ्या थुइका अवश्य नै न्याङ्का दिगु ख तर उके लागि चाहिँ जे क्षमापना चना आए दासे आधा सची नेवातेको राष्ट्रिय मेने नै मेन आफ्ना पछि त लसको सेना चुने छ सौ 42/1121/42/736 दासे चिनेवातेको राष्ट्रिय मेने

0: ज्यू निनामी भाजु मेजुबी राष्ट्र झस ध्याके गु नीति ह्याम्ले न मनु ते सन्जने यनाए चङ्गु दु छ्यादासा झिगु दे न्हापा निसेन थौतक यागु स्थिति स्वेगु खसा राष्ट्र झस ध्याके गु नीति राष्ट्र यात सेलाके गु नीति धिसिलाके गु नीति सदा सदा नुहनु गु तातुना कथन हज्यागु नीति सकत सकल नेपामी पिन्ता लस्ता जाके गु नीति थन तक मछि हिउपा हे धुङ्क्ल तक मछि हिन पाए धुङ्क्ल तर मनुते सन् धागु थे जागु नेपामी पिन्छ खङ्गु थे जागु मगस अले गुलिन शहीद पिस गुलिन बेपत्ता जुपिस गुलिन घापा जुपिस देशागु गुपट्टि योगदान ख बलिदान ख वो कथन जुकी मजु धेगु विशेषण धासा जिसा स्वेहे ल्यो धनी धासे एजुसाना जिसा गुलिन नुनु गु धन सरकार वयासनी ओ सरकार तेसा अवश्य न बाबा लागु शहीद पिस बेपत्ता जुपिस घापा जुपिस ब्यावङ्गु हसनायता लस्तान ज्याके फेमा धेगु तातुना कथन थो ज्याचु न्याका चनागु जुल चासा धासे फोन सप्ती दिमा पासा त लस्कु स्याना सना हजुर हेलो
1: हेलो जोजोल्पा
0: जोजोल्पा म फुछी
1: माफो
0: हजुर जेना भविष्यका
1: मरानी
0: छ्याटेन ठाउँ
1: नक्टिन दस दुई रङ्गला
0: अहिले दस बजेलाई जेना भवि इला खाने मुखला
1: खल ख आपिन जाय आउने जस्तो ख आपिन जाय आउनु म अहिले ड्राइभर थियो तुलका
0: ए ए जसलाई जाय आमा दसलाई छिला त मिए जुलाई नि
1: ड्राइभर ड्राइभर लालाप्ले जानु नापा
0: मखला
1: जिन अरे जाऊ
0: यसो जिन छिटे जुल ठे जिन लाला उहिले जाने म जुल अले मेउला म फुची
1: मेउला फुका ठिकठाक
0: ज्यू अहिले बुद्ध ज्यू
1: हजुर
0: अहिले जिनलाई ठाउँ विषय हैगु मधु छिगु नुगो खाँछु दु पङ्का दिफु
1: जिउ नुगो खाँछु गाटाले चियापट्टी अङ्कुपट्टि छ टन दगे अङ्कल मङ्गला भाग्य चियापट्टि अन बिरगन्जा रु चापा अन टमक अनगन गर्नु ऊ अडि नागा थाना चाहिँ डु मङ्गला ऊ चियापट्टि मयङ्कल ऊ याक न ऊ चियापट्टि चाहिँ यङ्गी त चाहिँ ऊ प्रदेश सरकार न पहलिया मल अहिले केन्द्र सरकार न याक न पहलिया मल गठो चियापट्टि अरे रोकाइ नाते मुजुगा ऊ चियापट्टि याक न याक्न चाहिँ ऊ निर्यात याना मृगा चाहिँ नेपाल सरकार यता जी बुद्ध सिकानेका सिकामी पाखेँ इना बिहान तुनगा अहिले आम ठु जेरमेन सिरेन देश सा चाहिँ ठेङ्ग मङ्गला ऊ देश सा चाहिँ प्रदेश सरकार पलिया मल्गा प्रौ प्रदेश न छुठु ठाउँ ठाउँ छौ छौ प्रदेश गुलगुली बोरा सा माउक गुलगुल टन माउक ऊ चाहिँ ऊ म ऊ सा चाहिँ यहाँ नयाँ ठो तिस एकतिस गते भित्र हेमा गा क्यानाडा नै चाहिँ उठो पोटास मल हेमा बङ्गला अनुहार चाहिँ हेबलाई ठुन टाइम लगे दिपलाई ठो वापी यसरी लाग्छ अहिले चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ ठो पलिया मल्का अहिले ठ ल ल हे त ऊ ठ सेना चौँटो ऊ नहर त सेना चौँटो ऊ नहर त चाहिँ मरमटेना याक्न चाहिँ ऊ भुइँ भुइँ ल ठेङ्गा बिमालका कृषक त हेट यदि अब के प्रदेश सरकार मन्त्री पद चाहिँ बाली न खस ऊ क्षेत्र ऊ सरकार चुना गठन नाटो यो खस यो सरकार चलाइ आफ्नोसँग चाहिँ बालका चाहिँ कृषक त हेट अहिले ठो चियापट्टी यो कृषक त हेट यज्ञ यज्ञ चाहिँ ठो निर्यातेना बिमल अहिले ठो देश साना यज्ञ आयातेना बिमल लगाजी बुद्ध सिकमे पगे इना पिना सल्लाह सुझाव बिहार
0: सुभा ज्यो लिपायती साना पोतिका दिँदै नाफ्यासे बुद्ध सिकमी धुम्बा ख चौमा भाजु नपा ब्यादुनाले वैक्ल धैदी गुदु सिमानाका चियापत्ती थाना चङ्गुदु उकिया त अफुका बी माल सरकार ल याक्न भिङ्का बी माल धैगु वैक्ल इनाप्याना दि गुदु साथो इनाप्नापा वैक्ल यिको इनाप्याना दि गुदु आ असार वया चङ्गुदु किन किसान त्यता जाने हात्या मलाइगु कथ सा ल लाना बी माल ठुकिया नीति केन्द्रीय सरकार निसे प्रदेश सरकार तक्क अले स्थानीय सरकार निसे केन्द्रीय सरकार तक्क न थो थुकिया नीति कुतयाना बी माल निसे असार बोले किसान तेसँग वा पिज्या यही गुली उकिया नीति सिन्चाइ ल ढ लया नीति ध त सिजु पिजु याना बी माल गुकियाना नेपाया त आप्ल अन्न सैगु गन चाहिने कृषि प्रधान देश धैगु ख कृषि प्रधान देश या त झ त्याके माल धैगु वेक ल थगु मनन्तुना देशना दिगु खसा थथे थगु बिच फुङ्केगु नीति सुम्पासा फुन्की दि वेक त जुन लस्कु स्याना चुना हजुर हेलो हेलो
1: जोजोलपा
0: हजुर जोजोलपा जाजो लस्कुस दु
1: सुबे देसन जना रुबिजु
0: हजुर राजेन्द्र नकमिजु ख
1: हजुर हजुर
0: हजुर हजुर जना बबिसि ल
1: नेपाल भाषे ज्याजा छिन नुङले त्यहाँ ज्ञान दिस सहन तेस गाइजनु
0: मला
1: गुल्न छि नेनामित ठ्याठास नेगो जिल्ला निहे कया सोनिग दुल दाजु टके ससा म ससा न छिटो नुङले छुचे नि विचार भए ओ भावना यो चाहिँ ठिक स तेटिस गुल्टाको मसहरूका छु नि मसहरूका ढल्ने चाहिँ छिउ सहन चाहिँ अन प्याउ मुखो होला नुङले दैछु नि जे छिस याबले चाहिँ छुन राष्ट्र देशी लागि चाहिँ छिस बाल्यामा भिन्मा विश्व चाहिँ नि थन थन त्यहाँ खसा आज नेपाल देलाई यो कहिले लान्छौँ होला तँ चाहिँ नि छ्या छुकानहरूका छ छिस चाहिँ नि सहसी पिन्सनलाई चाहिँ नि उएको छ एनडियोलाई ठासे डो तर मसा पिन्द नजाने ठेना सेना ठासे थ्याङ्क्यु रहेको चाहिँ भावना त्यहाँ चाहिँ नि ज्ञान दिसा झि ठाठे नेपाल देश स्वर्गीय जीव ख सहसी पिन्स सिमेन मसा पिन्स सेकमा अवस्था डुका ठाउँको नै होला
0: त्यस
1: मस्यो मस गर्ने थिएन प्याउने मसहरूका ढल्ला होला गन्थे नि जे सय ट्याम सर ढल्लाउ छु सर ट्याउ ठ्याँ जे ए जिया चाहिँ गम्ले गम्ले थै नुले घाजुपट्टि चाहिँ नि सर्दैछु नि ओ सह चाहिँ नि बेटीको ननिहेका चाहिँ नि थै त समाज चाहिँ नि हेपट्टि समुदाय समुदायले चाहिँ नि घिउ चाहिँ नि भावना सर्दैछु नि सठन होला घिउ टोल बोले न दुइजने नि टोले न चाहिँ नि छुछौँ खण्ड जुइछु नि ज्याम्बोजुपट्टि ज्या ढैरीसँग न मला छटै चिज चाहिँ नि डर नुगले डु छुर्का रहेछ नक्टिनेजको जो घटना खेचो मेस्तो चाहिँ नि वास चाहिँ नि नका चाहिँ नि उसा फिङ्क्यु विचार तया मखला तर ऊ वास घे उल्टा लाटखने सने म फुका सोहीसँग ऊ वास नयाँ चाहिँ नि छौ प्याकेट नब्ल्याएर झन् चाहिँ हस्पिटलिङमा अवस्था टक्कै थियौँ जो या वास भविलेसन एकदमै सोच विचार नाचेको भवि एना पेन्जन वासलाई थयोपट्टि रोग अनुसार भविमा आउख मखला तर ऊ वास न उल्टाको चाहिँ नि प्यासी ज्यान्छुन् रहेछ छिसन डक्टरमा बि तर वास चाहिँ नि ऊ प्यासी जो वास खल मखला छिसन ठिकैमा आउ डुठन गुल्न चाहिँ नि ठन डुप्लिकेट वास न वैचौँ डुजे छिसनलाई सी मुखो पसलाई बि छिसन छ्याङका चाहिँ नै नयाँ चाहिँ ऊ वास न झन् उसा फिङ्गे सट्टा उके झन् चाहिँ साइड इफेक्ट एना चाहिँ सोनै मफेक बिन्दु यो कारण एना चाहिँ वास खन भविलाई डक्टरले सल्लाह अनुसार भविरहेछ तर डक्टरले बिउजको ध्यान मुज्यो पसले चाहिँ नि वास न्यास हेब्ले न थो वास न छुचु ज्याए ठुकै छुचु असर जे कारण नियन दिस आठो चिज मस्ते त चाहिँ थो थोङलाई चाहिँ झे फेसबुक चाहिँ नि दु डक्को चिज मखला अहिले ऊ वास न छु इफेक्ट जोडका छ मस्ते त चाहिँ सोलेसरका टाइपलाई चाहिँ मस्तेसँग परे ढाइबेलका थो वास नलाई चाहिँ उल्टा ज्याएका थो अब ढे मुजुहरूका मस्तेसँग नका मुभ्योका सोहीसँग ए जो कारण होइन छिसँग वासको ढ्यान मुज्यो वास न ज्या भिउँ यासलाई थियो उसा भिनाउने उख मुखो ढाएको वास ऊ वास न छिटो चाहिँ उल्टा एना चाहिँ नि ठिकै चाहिँ डो छेम्पो टाक्न चाहिँ नि अन पाहुनमाले अवस्था दिन्छु नि थो ठिकै चाहिँ जो या घटना जो चाहिँ थोचको नोल्याट घुल्न चिज उसा भिङ्क्यो लागि चाहिँ नि सदना वासको भिन मुखो ओ वास न गुल्टाको छिटो ज्याइ रहेछ विचार
0: राजेन्द्र नकमेलु हिटी पाखे वैक्ल सप्ताह दिगु खले अवश्य न ख वैक्ल दैदिल कि गुलिन अस्पताल पिसम बिगु वास सदा सदा भिने धैगु न मधु छादा छ थौकरे यो वास कम्पनी त दु अलि गुली चाहिने स्वास्थ्य मन्त्रालय वा नेपाल सरकार छौकथ चाहिने आधिकारिकता बिगुपट्टि जुइनफु मजुगु न जुइफु उकिन चाहिने मेडिकल टेसन काफु हस्पिटल टेसन काफु उकिन चाहिने वा आधिकारिकता दुगु खकि मको अलि उकि डेट गुब्ले टक दु अलि छु रोग या त छु वास बिगु ख व सोया जक नसा वास जुइ नत्र चाहिने बिस जुइ अलि राजेन्द्र नकमिया तिरिमे जु या त बिस जु या चङ्गु त उकि या न वैक तस्क महमफिया चङ्गु धका वैकला सुचौँ बिहा दिल वैक या तिरिमजु याख न याख न बिउसा जुइमा अले याक्न थुजागु वास नैपिन त न मने त न वैक्ल सल्लाह सुझाव ब्यादिगु दु अले वैक यात्री मेजु न याक्न याक्न खला फैगु कन्डिसन दे फे माधा से अले बाबुकाजी म बाबुकाजी तया तयकु सुबैदु जितलु मङ्का दिगुले अले वैक्ल मेगु न धैदिगु ख कि झी नेवा तेसा थथगु झी नेवा तेसा जगमकु सकल नेपा दुने चोपिगुलिन राष्ट्रभाषा नुआइपिए आदिवासी जनजाति पिन्दु वे कपिसन थथगु भाषा संस्कृति या त छेलाबुला हलदास अवश्य नथु गनाउनी मुखु सुनाउनी मुखु लेना चोनी माना चोनी तगा दैदिगु खदा से फोन शब्द दिमा पासे तलसकु सेना छन हजुर हेलो जोजलपा जाजे लसकु छदु हजुर गोपाल ज्यू म फुची हजुर अलिक गति जुवासँग दुःख प कमल बिना पाके मे छ पुने नि अलि गोपाल भूमिज्यू खोप कमल विनायक पाखे बोतिका वैक्लान धैदिल कि विभेद या मजु मुखला ठना चाहिने ढाबले चाहिँ फुकन समान त समावेशी त धाइ तर ऊ ध्यान छ मगा व्यवहार न जुई माला रेडियो नेपाली न मजु त का वैक्लान धैदिगु छादासा गणतन्त्र दिवस दिने नेपाल भाषा चाहिँ बुख म नेपाली भाषा यु बुख हो न अले राष्ट्रपति न नुवागु न हो न तर ओसिबे ह ज्याजो ह्याकी पिसाए ज्याजो या विशेषण जानकारी बिल तर समाचार दशा म बिल देखा वैक्लान नुग स्याका दिगु दु त स्यागु नुग या त लङ्केगु नीति वैगु दिने अवश्य नकु त यागु जुइ धासे नेनामी भाजमे जुबे आधा छ छपु मे नेने मे नाप्रा पछि तलस्कु छ या नहाचु ने जासा दासे थुमे छिगु नीति

निनामी भाजुमा मेजु पि अप्सरा जु अवल रे धैगु रसाय मिन हालदिगु थु अतिकम बालागु मेख मेनापना पा सुम्पासा मदी अले इन फुइन दक प्राविधिक पसा जानकारी बिया दि धुंक गुदु धासा आदर्श सुसु पास विषम फोन्याना दिलले दैगु विशेष वैक पिनीगु नाचक कयाचना वैक पिख बुद्ध सिकमिजे धुम्बा ख ये पाखे राजेन्द्र नकमिलु हिटी ये पाखे अले गोपाल भूमिज्यू खोप कमल विनायक पाखे खसा रत्नलाल श्रेष्ठ ज्यू ख खोप सूर्य विनायक पाखे अले येल पाखे इतिनानी येल पाखे चन्द्रबहादुर साके ज्यू ख अले सोनीको पाखे जगको बोती कागुथे खने झुल ओके नेपान्यङ्क चोपी सकल नेपामी नेवामी नेवा समुदाय झसा लसकुस दु नापा नेपाल भाषा यता मायामती नायाना नुआपी गुलिना नेपाली समुदाय दु छिक फिन्तान लसकुस ख ने दासे आना छपुमे ने मेनाप्रा पा छित लसकुस यता उली थाकुई उली याफे मकु थाकुई उगी आदास छपुमे ने मे ने छित गथेता ओ दासा जिता सोसियल साइट पाखे जानकारी बिया दिसा दासे आदास छपुमे

0: जो निरामी भाजो मेजु पे जे असारी आगु मेन हैगु दु अले उकिन थोमे पुअङ्क निके म फुट थोमे हाला दिगु ख अमर चित्र कारोलस्ता जोसिन मति नाया ख दैगु मे ख अले थौ जि बामा लागु मे त लैगु ख तर याक स यागु मिजन तेगु यकु स दुगु जक मे वन एसा त बि मेगु अले हाना बाबा लागु मे हेगु जुइ धैगु बचम बिस निरामी भाजो मेजु पे थो ज्या ज्या त माया मति नाया ना नेना दिस अले सल्लाह सुजन बिहा दिस नाप्न पाँचीको बिचमा सोसियल साइट सोया सुना दिगु दुस अनपाखिन छिस सल्लाह सुझ बिहा दिफु क्या त सियरियना दिफु नाप नापा अफ हियरिन छिस म्यासेन्जर पाखिन जानकारी बिहा दिफु अलि फोन लिया यदि जुगु दु धास ओ पाखिन छिस जानकारी बिहा दिस सब तया दिस धासे निनामी भाजु मेजु पे आसार लिक वया चोङ्गु दु उकि असार या त कया किसान त युकै ले त इच्छा दस माना पिन मुरी सेकेको दैगु वेक पिनिगु तातुना वेक पिनिगु मगस वेक पिनिगु युकु युकु कथा यागो हाथिया त नङ्केगु ला कथा काइगु ख उकि थो ला या त छज धाकेगु नीति थो किसान तेगु मगस या त पुङ्केगु नीति धासा अवश्य न सरकार सा निसिं कया किसान ते त मागु पुसा अले हल झोल सिन्चा या त छिचु पिचु या फे मा तेगु इना फे या से फोन साफ तिसुम पासा दिद गा दै दिल वेक न पछि त हाकला खला फै मकु एसा त बिजि वेक त लस्कु से हजुर हेलो
1: गु शताब्दी देखु ख ऊ अनुसार जुनी नाप नापाला थो मूर्ति देखे पिसन चित्र देखे पिसन ला न्यामी खा डेके मफु ढेपटि नेप डेके मफु ढेपटि खनन दुसा आकार जग वेका डेका टौ ढेपटि न इतिहास दुनिसा
2: ओनु लुयाओ पुरी मखु के आ नुटे आ दोंग दुगा सक्षिन
1: ए जु जु जु नुली से
2: ओ दे आ दो आ तमारम छन गुलछन नाइन का नाइन ता दोंग दुगा ने दियो
1: हां
2: तो दियो इन में दियो दुगो जुलो दे होगा जिने न इके से गु ओन टे की बले ते वे कप इन स गो तो आ न गो इन चेट के गो चुटा के आ दे ओन गो सा इन दोंग वे कप इन द सुबे मला तो टे की बले दियो आकार अंग पटे अंग पुंग के टे की माला दे होगा गुनो गुनो मुनुला मुनु ठे हम न टेरो दु गुली से जो लादी सुदे
1: जो नुवाकोटे बौद्ध यागो मूर्ति लुई दुङ्कानी अनाथिचे डियो तत्तै तगुदु तर डियो यागो आकार प्रकार प्रकृति आकृति सिधेको ते मलाई देखु वैका इनाप ख दासे निनामी बाजु मेजुपी वैको आइतबार हान नाप्ला थोए इले अले बाम्बा लागु मेन न्याङ्के अले छिना पसल न या तासे आदस दक्ले लिपाङ्गो असारिया मे तो तुसे थौदस प्राविधिक भाषा उत्तम पाण्डे तैको सुबा दे छासे हा सकल निनामी बाजु मेजुपी अले फोन के बोती कया दिपी अले फोन या त कुत या सान फोन मजुपी सक्क सित न नुग मसा कुस्याम फोन्याना दिसा धैगु इनापिया अले जने सक्क सित युकुकु सुबा जिगु ज्याजो माया मते नाना नेना दिल सोया दिल उके नि तिकुकु सुबा धासे थौया त धासा दक्ले लिपाङ्गु मे ओ डार्लिङ धैगु हाका दिल

0: लसो फ्याफुल्ला रेडियो गेताङ मुगलान लगे अर्थात वैदेशिक रोजगारी रङ टेनमुला गा सूर्य मोक्तान वैदेशिक रोजगार बोर्ड लुनखाङ लरोरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल से शोभा चौ गेताङ साताला तिरेम दिनिरे आइतबार कुनु चुनुन दुईरी प्रसारण लाबन खापमला फिर्का बिल्डिङ निसी लाबा गेदा सुरक्षित व्यवस्थित थेन दिगो सवारी सेवा पिनमाला टाङ्गा तोकला दोबा थेन दान्दे मुबा ठिम व्यवस्था द ज्याबा सवारी खाम दोबा ताम फिर्का बिल्डिङ गेलाबारी मि पुइबान खाबा छोङखेन कादेसे पाङबमला फिर्का बिल्डिङ मि पुइबा छोङ सेङबारी इजाजत पत्र किनमा गेन्दुन कादेसे फ्री भिसा फ्री टिकट ला थिम्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन लबारी आखम्बसे फिर्का बिल्ला गे सम्बन्धी दान्दे म्लाङ सिटीबा चुनौती द छाङ्न लबारी दान्दे तोनुन तोबा ठिम गदे सोधो बताम्रे सरकार दा ल्यामन खाल सुझाव गदे पिनबा मला तिनी लगे तांग्री छोङकेन गदे से सरकार दा पिनबा सुझाव गदे थान्छल मला ओसम वैदेशिक रोजगार बोर्ड लुनखाङ से पिनमान खाबा लोलो लोलो महत्वपूर्ण सूचना कदेनुन तिनी लगे तांग्री थानबारी बाङ्ला सेल मला गेताङ लिच्छा दोनाङ्यान बारी राङदा मोइजेन मला फिर्का बिल्डिङ निसी लाबा गेदा व्यवस्थित सुरक्षित थेन मर्यादित सवारी वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 से सरकार सम्बन्धित निकाय इजाजत पत्र किनमा गेन्दुन थेन गे लाबा मिला भूमिका थेन जिम्मेवारी दा तोकला सिपिन बमला तासाइनुन लिछल दुईरी फिर्का बिल्डिङ गे लाबारी मि पुइबान खाबा छोङखेन गदेसे दान्देला टिम व्यवस्था दा ज्याबा सवारी विषय लामन खाल्ला काठुइला बारी वाङसिजिन बमला छोङखेन गदेसे टिम संशोधन लादोबा सेवा शुल्क थिन मि पुइबारी लागप्ता टाङ्गा तोकला दोबा गे लाबा मिदा पिन्छ त तलब तोकला दोबा मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया दा व्यवहारिक सोधोबा गे सम्झौतालाई आधारले खाप्पै बिमा लिच्छा के लाबारी पुइबाला स्वीकृति पिनमा थिन व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई व्यवस्था दा अझ व्यवस्थित सोबारी खाम्तो बताम लाबन खापमला विशेष लसे वैदेशिक रोजगार ऐनला दफा चुइसे घाइन्से चुइसे कुदोनाला ठिम गदे दा दुई अनुसार संशोधन लाबारी खाम्सम छोङखेन थेन गे लाबा मि गोर निनुन पक्ष से नादोबा लामन खाल्ला समस्या गदे दा छाङ्ना लाबारी खाम्बा ताम छोङखेन गदेसे लाबन खापमला ऐनला दफा गदेसे गे लाबा मि पुइब विभागा छन् स्वीकृति किन्तो साम विभागरी अनलाइन निवेदन पिन्दोबा रेदाङसेन छिबा राष्ट्रिय स्योस्योरी च्याङ्नारी नुन सातागिकला म्यात थान्से विज्ञापन छिदोबा गेलाबा मि दाम्बाला सूची सोधोबा फिर्का फिल्डी पासपोर्ट पुइमा स्वीकृति किन्तोबा थेन गेलाबारी निबाला अनुमति याङसे जिन्बा मिदा फिर्का फिल्डी गेलाबारी पुइबा बिमाङा छन् श्रम स्वीकृति किन्मारी विभागले विवरण पुइदोबा ताम लाभमला उसम सरकार से नीतिगत तह ज्ञान प्रभावकारी नियमन लदोबा शून्य लागत सम्बन्धी लठिमरी व्यवहारिक निर्णय किन्दोबा तामला माग छोङखेन गदेसे लाबन खापमला चुनुन ताङरी दारिम ज्ञानगे फिर्का बिल्डिङ गेलाबारी मिपुइबा छोङखेन गदेसे सरकार दा पिनबा तिलाई सुझाव कदे
1: म राजेन्द्र भण्डारी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघ
0: राजेन्द्र भण्डारी नज नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघला गाछला चोहनु निन्ना गन्सेजा नीतिगत हिसाब से सुधार लदोला बिसि तिलदा पाङमा हिन्ना बिसाम सरकार से निजी थुम्दा मिपुइगो बिसि लाइसेन्स पिन मानन मला उसे मिपुइब दुई रिजा सरकार से कि सेन्देरी कि तोङचुई टाङा चेकेन किन्छ पुइगो बिसि नुन पाङमान खापमला सरकार से मिपुइदो साम लगाप्ता दिबा बिनान खर्च टिकट मेडिकल इन्सुरेन्स देन बोर्ड रिफादो बटाङा सुताइनन बिनान किन्छ चेकेन पुइबन खापमनाङ बबला छोङखेन गाते दा जा सेन्देनी मिपुइ सिपिङगो बिसि पाङमान खापमला सरकार से दान्दे गे लाबारी मिपुइबा युल गदेरी चुबिमा गाछलासी जिनमा सम्झौता दा ना कार्यान्वयन लाबारी खाम्से टिपमला ना ज्यानलासी छार सम्झौता लाबारी खाम बमला त्यतापछि छोङखेन गदेसे सेन्देरी अथवा तोङचुई टाङ्गा चेकेन किन्सी मिपुइबारी खाम्बा अवस्था दान्दे मुनुनारे तिल्ल बिसाम दान्दे मेडिकल लाबारी तोङचुई टाङ्गा निबमला उसेम अभिमुखीकरण ला तालिम किनमा दुई रिनुन टाङ्गा फादो बमला इन्सुरेन्स लाबा दुई रि तोङ सोमसे गार्जाङा टाङ्गा निबमला बिसाम सामाजिक सुरक्षा कोश्री तोङी से गार्जाङिस थेन बोर्ड्री तोङगिक से गार्जाङा टाङ्गा फानुन तो बमला उसम छोङखेन गदेसे सेवा पिनमला थेन हवाई जहाज ल टिकट ल टाङ्गा नुन फादो बमला थेतापछि फिर्का बिल्डी मिपुइबारी लागाप्ताबा खर्च कादे दोन किनबारी म्याङला बिसी सरकार से तोकलाबारी खाम्दोबा गाइमराङ बमला उसम टाङ्गा पिनमा दुई रिजा बैङ्ग्याम चेक इन पिन्दोबा टिम सोबारी खाम्दोबा गाइमराङ सिटी बमला खाजी बैनुन गेलाबा मि फिर्का बिल्डी गेलाबारी बिसी निमा ठगाबा आतागाई थेन्से फादोबा चेक इन टाङ्गा फाबारी खाम्बा टिम सोसी पिनगाई बिबानुन गाला ताम हिन्ना सरकार से कुङमा टिम सोसी चेक इन आता थेदा कार्यान्वयन लाबारी खाम्बा कुङमा टिम सोबारी नुन खाम्दोबा गाइमराङ बमला चुराउनु लसी सरकार से व्यक्तिगत हिसाब से नुन गेलाबा मि निबारी खाम नम्बर ठिम सोसिपिन बम्बला व्यक्तिगत हिसाब से नेपा गते दा लाख चुइदोना टांगा किन्छि युरोप थेन सानी लामन हिलगा देरे पुई सिटी बानन गन सेमनान सिटी बम्बला देनबा तामजा तिला हिना बिसाम बिचौलिया से टांगा चासे बिसते सिपिन बम्बला ओसे पांगबा दुई रिजा निबा बिसे गाइनन बांग्ला से निबारी छेबा हिना बिसे पांगबा बम्बला चुसे जा लामन छेगा दे नुंगनाला सिटी बम्बला थेदा बसे गाछाला दुई रिजा छोंखेन गते से बिमाइनन सान मिसे थेन कन्सल्टेन्सी गते से भारत रिटिसी मिपुइबन खाबासे नेपाल रि लामन खाल्ला समस्याका दे ठुङ्नाला सिपिन बम्बला थेतापछि ज्याबाठेम सोसी मिपुइबारी लागाप्ताबा खर्च गादे हिन्न थे तोकलासी मिपुइबारी म्याङसाम ज्याबाताबारी खाम्बा ङाइमराङ बम्बला चुराङलाबारी खाम्साम छोङखेन गादेला गुङरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आताबारी नुन खाम्साला मुबा थेराङ लामाजा हिउल्से ज्यानालासी कर्किनबारी नुन म्याङसेला मुबा विभताम
2: मेरो नाम हरिबहादुर पाण्डे छेत्री फ्युचर स्टार मेन
0: नालामिन हरिबहादुर पाण्डे छेत्री नाजा फ्युचर स्टार मेन पावर कम्पनीला सङ्खेन नेपाल रोजगार व्यवसाय संघला सल्लाहकार थिएन नेपाल वैदेशिक रोजगार एकता समितिला दान्दे कुचुसे कु प्रतिशत मेन पावर कम्पनी गदे ढुङ सिजन बम्बला खास लसी छाड डिमान्ड गदे नुन खासी डिबा आरे ओसेम फ्री भिसा थेन फ्री टिकट री मि पुबरी खामा अवस्था नुन मुनन आरे दरेम सरकार सेन सेवा पिनबाला टाङ्गा गदे दोन किनबारी म्याङला बिबताम तो क्लासी पिनसाम ज्याबता सेला मोबा थेराङ नुन लसी दान्देला थिम दा संशोधन लादबा गाइमराङ बम्बला थिम संशोधन लसी जिनबा लेछा युलसे तो क्लब बिमा लामा टाङ्गा किन्से मि पुइसाम थिम अनुसार ला कारबाही लाबरी नुन खामतोला नन्से दान्देला सरकार से छोङखेन गदेदा थेन गेलाबारी निबा मिदा तोबा खाल्ला ठिम सोसेला मुला बिबतामले आशतासे टिपमला तर सेवा पिनमाला टाङ्गा गादे दोन किनबारी म्याङला बिबतामला टुङ्गो आलानन सिन्देरी गेलाबा मि फिर्का भिल्ली पुइसी पिन्दोजी बिसी पाङसेन टिसाम गने छोङखेन गदे सिजा मेन पावर कम्पनी ढुङसी पिन्सेला मुला बिबताम नदा पाङ्गे मनमा मुला
3: मेरो हरिश चन्द्र कुँवर इकोटा इन्टरनेसनल
0: नालामिन हरिश चन्द्र कुँवर हिन्ना नालामिन पावर कम्पनी जा याम्बुला गंगबरी मुला याङला हुल्ला बजेट जति मुला थेदे राङमानी याङला हुली रेमिट्यान्स नुन खासी टिपमला त्यसो लामा ह्याङला हिउली फिर्का भ्युली केलाबारी मिपुई बा छोङ तोब मलाई कि तोबा आरे तोबन मलाई बिसाम गादे दिङ दोना त तोब हिन्ना थे अनुसार ल ठिप सोपारी खाम तोबा गाइमराङ मला फ्री भिसा फ्री टिकट ल नाराजा लामन मिदा सिम्नी सिटी बम्बला नेपाली हुलबासे फिर्का भ्युली केलाबारी निमा सेन्देरी निबारी म्याङमा निर्णय लाब विभाम लामन ज्याबताम हिन्ना थिल्ली छ जति नुन छार ब्लोन गादे खाजी थेन गादे खालाइसे नुन चु ठिम्दा लागु लाबारी थेन खारेज लाबारी नुन खाम सिटी बा आरे उसन दान्देला चु छार सरकार से बेनान गे डाटा ला आधारित चेकेन लामन खाब मला तसै नुन दान्देला चु सरकार से नुन गाछला सरकार से राङमान गेलाबारी वाङबासे चुसे नुन ज्याबालाबारी आखामदाला वा विभताम गादा मान सिटी बम्बला त्यतापछि युल्सी तारेम छोङखेन गादेदा तिलाई न तिलाई विकल्प पिन्छी जिनमा लिएछ चेकेन छोङखेन गादेदा अङ्कुश लागाब्लासम ज्यापताबरी खाम्छेला मोला पिबा गादा मान बम्बला स्यान खाजी बैनुन विकल्प आपिन्ना छोङखेन गादेदा चेकेन अङ्कुश लागाब्ला बा गे तान्दे ज्यापब्राङ सिटी बारे फिर्का बुली गेलाबारी निबाजा याङला युल चेकेन आङिन युरोप थिएन अमेरिकाला मिएनुन स्यान हुली निसी गेला सिटी बा गाइमराङ बम्बला उसे मोख्युल्ला खाजी बैनुन हुली गेलाबारी निबारी म्याङमा याङताम बेनन हुलबाला ताबु मोला दान्दे लिचल दुईरी एनजिओ आइएनजिओ कदेशे सेन्देरी गेलाबारी मिपुई सिपिन्दोला बिसी लामन गेताङ्गादेखि सेङसे खर्चला सिटी बानुन नाङ सिटी बम्बला थेनुन एनजिओ आइएनजिओ कदेशे साउदिरी निसे चुरङमा ताम तिल्दल्लाबारी आखाम्न टिपो मुलो राङ थामला साउदिरी बेन्दुगेक्से लानुन दाङसे साउदीला तुङ्गे किटाङ्गा लेबी फानुन दोबा ठिम्मला चुताम्दा खारङसे गोबारी खाम्दोला बिसाम मेन्दो चुई गेलाबारी निबा मिला डिमान्ड तेसी याङला हिलग्या मेन्दो चुई गेलाबा मि बोर्जी बिसाम मेन्दुगिक मिला तोङचुई से नि टाङ्गा नाछन फादोबा थेर्ला टिम्मला ओसम इन्सुरेन्स ला तोङसोमे नन फानुन दोबा मला साउदिरी प्राङ्गो हिल्ला मेन्दुगिक गेलाबा मिसे लानुन दाङसे तोङगिक टाङ्गा लेबी फादोबा ताम्मी अन्याय लाबा आइनम खायोम चुरङमा ताम्रे खालाइसे ध्यान बिन्बा चुरङमा ताम्रे एनजिओ आइएनजिओ गादेसे ताम्लाबारी खामा तु मुख्युल्ला लामन गेन्दुन गदेसे चुरङमा ताम्ला सिपिना तु चुरङमा ताम गादेरी नुन ध्यान पिन्दोल विभाग आलो ताम हिन्ना
3: तारानाथ अरियाल हो मेरो रोयल
0: मेलामिन तारानाथ अरियाल हिन्ना नाला रोयल गण्डकी मेन पावर कम्पनी याम्बुला सामा खुसिरी मुला वास्तवरी फिर्का भिल्ली निसी गेलाबा मिजा अमेरिका लानुन ताप मुला नेपाली हुलबा चेकेन फिर्का भिल्ली निसी गेला दोब मुला बिबतामले दुङ्गल गाम दोब ताम मुन नारे गाइजा निबा गादिङ डुदिङ गाछ हिन्से लामा मिपुइबारी खासी जिन मुला तिल्ल बिसाम गाइजा दन्दे संस्थागत हिसाब से चेकेन मिपुइ सिटी बमुला स्यान खाजी बैनुन माध्यम ग्याम गाई मिपुइ सिटी बारे युलसे ज्याबा ठिम सोसिपिन्ना ओसेम गाइजा ज्यानालासी गेलाबा मिगादे पुइबारी म्याङला ताला बिबताम मान्न मान्नन चुइदिङ थाल्छ जिम्बामा चुपी बङ्गाछला सरकार से खासलासी कोङमा ठिम्सो भरि नाखाम्ने दान्देला छाल सरकार से तिलाई ज्याबा ठिम्सो चिपिन्दा वा बिबा मान्छे टिपमला पाङमा हिँड्न विसाम फिर्का भिल्ली गेला भरि मिपुई वा छोङला थिम्तिला हिँड्नु जस्तो कि फिर्का भिल्ग्याम रेमिट्यान्स खाप हिल्का देरी लोलुन थिम तापमला नेनगोर हिल भारत लन तामलाबा हिँड्न विसाम फिर्का भिल्ली गेला भरि मिपुई वाला तोङ सोमचुई से घा आइसी टाङ्गा किनबारी म्याङमा ठिम्सो चिपिन्बा मला गाई चु तामला सिटीमा गेलाबारी निबा भिदा लामा टाङ्गा किनबारी म्याङदोला बिसी पाङबारी माइबा हिँड्नु नाइन गेलाबारी निबा भिएनुन टाङ्गा फासी निमा हिँड्छे ताङसी ताङसी निबारी खाङ्गाइ बिबा गाला ताम हिँड्न उसेम सरकार से फिर्का भिल्ली गेलाबारी मिपुइबाला चुदेनुन टाङ्गा किनबारी म्याङला बिसी तोकलाबा लिचा चेकेन थे तोकलाबा बिमा लामा टाङ्गा किनबा स्याप्सम थेरङमा छोङखेन गा देता कारबाई लासै ताला बिबा गाला ताम हिँड्न
4: रवि बन्जाडे हालै मेन पावर
0: गालाबिन रवि बन्जाडे हिँड्न नाजा क्योलोलो चु मेन पावर छोङरी वाङखापा छारमी हिँड्न नाजा घिचु से ब्लिडिङ दोना फिर्क्याबिलिटी से गेला से एक हाबा मिएनु निन्न खाजी बाइनु गेला बारी खाप्पै बिमा गाछा जा थिम सोधो बमला थेलिछ जेकेन थे थिम दा तेन मन खाबा मले कि आरएबीसी नियमन लाबन खाबा जा ngamrang bomla बेनन सरकार थानमा गादे लागि ग्रिटी से काठुइ लासे युलसे तिल लाबा छोनखेन से तिल लाबा बिबतान बेनन से लाबन खाबा मुसाइन हुने गेला बारी निबन मुबा मिजा लामन पीडित ता सिटी बा ngamrang सिटी बमला पीडित ता दोबा जा सरकार थेन छोनखेन गोरङी सेन लासे ताबे हिन्न फिर्का बिल्डिङ से गेला दबा बिबा याङ बिना नेपाली ला बाध्यता हिन्न त्यतापछि सरकार से याङलान हिउले गेपिन मारी खामसाम लामन ज्याब तबारी खाम्बा ngamrang बमला उसेम फिर्का बिल्डिङ गेला बारी निबन मुबा मिदा बिमाइनन निसी खाबा गदेदा जानलासी व्यवस्थापन लासी पिन्दो बानन गाइ नाङ सिटी बमला
4: आइकला व्यवस्थापन गर्नुपर्छ
0: धन्देङ्गेन्छुजी वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 दा संशोधन लासिन ता साइनन फिर्का भ्युली गेलाबारी मिपुई वा दुईरी ठुङमा समस्या दा छाङ्नाला बारी छोङखेन गादेसे पिनमा तिलाई सुझाव गादे दान्दे स्थानीय तहरी मुबा रोजगार सेवा केन्द्र गादे पोदोबा ताम्नन खासे टिपमला खाब नोर्दिङ एन्से रोजगार सेवा केन्द्र गादे दा रोजगार सिप थेन उद्यमशीलता केन्द्र डी पोसेला तापमला चु केन्द्र गादे दा स्थानीय तह सेन सेङबा थेन व्यवस्थापन लासेला तापमला चु केन्द्र से बेरोजगार मिला मिन दर्तलाबा सार्वजनिक रोजगार गेताङ सेङबा स्थानीय गे बजार ला कोइ ताम्लाबा सिप थेन माग नक्साङ्कन लाबा सिप विकास तालिम सेङबा गे सम्बन्धी परामर्श पिनबा जब म्याचिङ उद्यमशीलता प्रवर्तन थेन फिर्का भ्युले गेलासी एक हाबा मिदा पुनः एकीकरण लाभा सम्बन्धी ला सेवा गादे पिन्छेला तापमला
5: तिला राङदा थामुला फिर्क्या भ्युल्डी गेलाबारी निबा धुइरी ठगिरी परब ताबा मुसाम खारङरी नितोबा मुला
0: यदि राङ खाजीबाइनुन खाला ठगिरी परब ताबा मुला बिसाम राङ वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 अनुसार चुराङमा ताम्ला मुद्दा अथवा उजुरी बोर्से वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नितोबा मुला
5: इजाजत पत्र आकिन्न फिर्क्या भ्युल्डी गेलाबारी पुइसी ठगब लासाम
0: फिर्क्या भ्युल्डी गेलाबारी पुइसी पिन्न बिसै लुब तामथेन लोभ हुन्छ टाङ्गा किन्बाली छ फिर्क्या भ्युल्डी आपुइसाम
5: इजाजत पत्र किन्बा मिसे सरकारला स्वीकृति आकिन्न गेलाबा मि फिर्क्या भ्युल्डी पुइसाम
0: जाजकोला गते ता फिर्क्या भ्युल्डी गेलाबारी पुइसाम
5: सरकार से पुइबारी काबा भ्युल्डी गेलाबा मि पुइसाम
0: वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण से सुनवाई थेन फैसला ला सिपिन बबला
5: यदि राङदा न्यायाधिकरण से लाबा फैसला सेम आनिसाम सेम आनिबा कादेसे सोमची गा रे नाङरी ग्रेन ठिमखाङरी पुनरा वेदन लाबारी खाम्बा ठिमनन सोबा मुला
0: फिर्का भ्युल्डी गेलाबारी निमा सचेत तागे यदि राङ्गेनुन ठगिरी पर्व तबा मुसाम थिम अनुसार कारबाही लाबारी बाङ्लागे यदि ह्याङ खाजिबानुन हिल्डी गेलाबारी निबन मुला बिसाम फिर्का फिल्डी गेलाबारी निब बिमा गाछ ह्याङसे लामन ताम गदेरी ध्यान पिन्त बमुला ह्याङ खाप हिल्डी निबन मुला तिल गेलाबारी निबन मुला थे गेलाबारी सेब मुला के आसे बमुला राङ निबन मुबा हिल्डी पाङमा गोइ सेब मुला के आसे बमुला थे युल्ला ठिम थेन हिल ठिम खारङ बमुला थे युल्ला मिसे तिल धर्म तेन बमुला थे युल्ला मिदा ताङमा थेन आतङमा ताम गदे तिल तिल मुला बिबराङमा ताम गदे सेसी गोसी निसाम लामन च्याबतापारी खाम बमुला ह्याङ गेलाबारी बिसे निब हिल्डी याङसे थे युल्डी दोषी लादोबा गेलाबारी आसेसाम थेन्से पाङबा ताम आगोसाम थेन्द तिलाई ताम युइदो जिबिसाम याङसे खाप्पै बिमा गाछ सेनुन तोबा बिबा थे युल्ला ग्योइ हिन्न थे युल्ला ग्योइ आगोमा थेन्से तिल लाउ बिबा खाराङलासी लाउ बिबा ताम था तापारी आखाममा फिर्क्या भ्युल्डी गेलाबारी निबा दुइरी लामन खाल्ला दुङ्गाल थेन समस्या गते नहातो बमला उसेम लुबा आरोप थेन लोलोलोलो ठिम अनुसार ला झन्झट गदेनुन नहातो बमला थेतपसे फिर्क्या भ्युल्डी निबा बिमा गाछ चुराङमा ताम गदेरी ध्यान पिन्छ निसाम याङसे खाजी बैनन खाल्ला दुङ्गाल गदे आयनबारी खाम्बा बोला चुनन जानकारी गदेला छ्याम छ्याम्री तिनीलाई गेताङ ग्याम फेसिनीमा दुई तासिजिन बमला गेताङ मुगलानलाई गे अर्थात् वैदेशिक रोजगारीलाई फेरि राङ्ला तिलाई सल्लाह सुझाव तेन प्रतिक्रिया गदे मुला बिसाम गनीलाई इमेल ठेगाना info@febi.gov.npri इमेललाई बढी राङ्दा मोहिजेन मुला तिनीलाई गेताङ ग्याम छुबारी राङ्दा लामा लामा थुजे छे खाबा सातारी छार बिसैरी छानुन गेताङ भसी खासेला मुला थे दुई दोनादा गा सूर्य मुक्तान्द बिदुन्छुगो लासो फ्याफुल्ला
6: नेपाल टेलिकमको 4G

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल कूटनीतिक माध्यमसँ सीमा विवाद समाधान करबाक लेल नेपाल प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। भारत भ्रमणमे रहल मन्त्री खनाल आइ नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमे नेपाल भारत बीचक सीमा सम्बन्धी समस्या वार्ता आ कूटनीतिक माध्यमसँ समाधान करबाक लेल नेपाल तैयार रहल बतौलनि अछि। एक प्रश्नक उत्तरमे परराष्ट्र मन्त्री लिपुलेख लिम्पिया धुरा आ कालापानी नेपाली भूमि भेल दोहरबैत एहि सम्बन्धमे नेपाल भारत आ चीन समक्ष अपन आधिकारिक धारणा स्पष्ट कऽ चुकल जानकारी देलनि। दुनू देशक प्रधानमन्त्रीक सहमतिमे गठित समूह तैयार कयल नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजी प्रतिवेदन हुनका सबके बुझाओल जयबाक बात बतौलनि। दोसर प्रश्नक उत्तरमे नेपाल अपन दुनू पड़ोसी सङ्ग सहकार करबाक मन्त्री खनाल बतौलनि। ओ देशक परराष्ट्र नीतिक प्राथमिकता नेपाल भारत सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सङ्ग नेपालक संलग्नता सम्बन्धमे सेहो स्पष्ट कयलनि। एहि बीच राजदूतावास सञ्चारकर्मीक सहभागिता प्रति आभार व्यक्त करैत नेपाल आ भारत बीचक आपसी समझदारी तथा सहकारके आओर सुदृढ़ बनेबाक लेल अगिला दिनमे सेहो निरन्तर संवाद आ सहकारक अपेक्षा कयल बताओल गेल अछि। पूर्व गृहमंत्री एवं पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के नेता सुदन गुरुंग राजनीति में प्रतिपक्ष दल सब विरोध मात्र करबाक प्रवृत्ति के अंत होबाक बात बतौलनि अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी गोरखाक प्रथम जिला अधिवेशनक उद्घाटन कार्यक्रम के आई संबोधित करैत ओ नीक काज के प्रतिपक्ष सेहो सहयोग कर आगू बढ़बाक बात बतौलनि। पूर्व गृहमंत्री गुरुंग देश बनेबाक लेल सब गोटे मिलकर आगू बढ़बाक चर्चा करैत रासपा देश बनायल आ बनेबाक लेल आयल पार्टी भेल उल्लेख कयलनि। नीक काज के सब दल संग देबाक चाही ओ कहलनि। विरोधक लेल विरोध कऽ कऽ मात्र नहि होयत। गोरखा क्षेत्र नंबर एक प्रतिनिधि सभा के सांसद सेहो रहल ओ निर्वाचन में स्वयं कयल वाचा पत्र पूरा कऽ छोड़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। हम वाचा पहिने कयने छलहुँ, एखनो छी, काल्हि सेहो ई रहत, ओ कहलनि। गोरखा हमरा जिताओल, फोटो खिंचबाक लेल नहि, काज करबाक लेल ओ कहलनि। पूर्व गृहमंत्री गुरु निर्वाचन क्षेत्रक जनताक समस्या के समाधानक लेल जल्दीए सचिवालय स्थापना कऽ काज करबाक हुनक कथन रहल अछि। जिला में बजट नहि पड़ल शिकायत स्वयं के बेर बेर आयल कहैत ओ अपन थारी कतेक अछि ई देखला पर दोसर के थारी घटल कि नहि घटल से देखबाक ओ बात बतौलनि। जलवायु परिवर्तन चूड़े क्षेत्रक बढ़त गेल दोहन आ भूमिगत पानिक पुनर्भरण रिचार्ज नहि भेलासँ 12 जिलाक विभिन्न स्थानीय तहमे पेयजल के संकट गंभीर बनत गेल अछि। जिलाक सिमरौनगढ़, देवताल गाँवपालिका, पचरौता नगरपालिका, सुवर्ण गाँवपालिका, फेटा गाँवपालिका, विश्रामपुर गाँवपालिका, प्रासौनी गाँवपालिका तथा कलैया उप महानगरपालिका सहितक क्षेत्रमे बैसाखक दोसर सप्ताहसँ पानिक अभाव देखऽ लागल स्थानीयवासी बतबैत अछि। गर्मी बढ़ैत गेला पर समस्या आओर विकराल बनत गेल अछि। पचरौता नगरपालिका वार्ड नंबर एक के वार्ड अध्यक्ष विनय सिंहक अनुसार हुनक वार्ड में मात्र लगभग 80% चापाकल पूर्ण रूप में सुखा गेल अछि। बरसातक पानि जमीन भीतर पहुँच कऽ भूमिगत जल स्रोत पुनर्भरण होयबाक बाद वन विनाश, नदी जन पदार्थक अत्यधिक उत्खनन तथा अव्यवस्थित विकास निर्माणक कारण एहि प्रक्रिया प्रभावित भेल हुनक सभक कथन अछि। नेपाल खाने पानी संस्थान कलैया बाराक प्रमुख संजीव यादव के अनुसार मध्य प्रदेशक अधिकांश भूभाग में भूमिगत पानिक मुख्य स्रोत चूड़े क्षेत्र थिक। चूड़े के संरक्षण नहि भऽ सकला पर पानिक प्राकृतिक भंडारण प्रणाली कमजोर बनत गेल ओ बतौलनि। हुनका अनुसार केंद्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार दीर्घकालीन अध्ययन आ तैयारी बिना विभिन्न स्थान में 300 से 400 फीट गहराई धरि डीप बोरिंग संचालन कयलाक कारणें भूमिगत पानिक दोहन तीव्र बनल अछि। एक दिस पानि रिचार्ज होबाक अवस्था कमजोर अछि तऽ दोसर दिस गंभीर बोरिंग मार्फत पानिक अत्यधिक उपयोग भऽ रहल अछि। एहिसँ सतही तथा उपरका तहक चापाकल समय सेहो नहि आयल अछि, यादव बतौलनि। खाने पानी तथा वातावरण क्षेत्रक विज्ञ सब समस्या समाधानक लेल तत्काल अधीनकालीन दुनू प्रकारक उपाय अवलम्बन कयल जेबाक बात पर जोर देलनि। हुनका सबके अनुसार परम्परागत इनार सभक संरक्षण, वर्षाक पानि संकलन तथा पुनर्भरण प्रणालीक विकास, पक्की नाली तथा ढलान सड़क सेहो पानि रिचार्ज मैत्री बनेबाक व्यवस्था, चूड़े संरक्षण तथा भूजल दोहन के वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक अछि। विज्ञ सब कहैत अछि जे अखन देखल गेल समस्या केवल पानिक अभाव मात्र नहि भविष्य में मधेशक लेल भारी वातावरणीय
आ मानवीय संकट के संकेत सेहो थिक। समय में प्रभावकारी डेग नहीं उठाओ जा सकला पर बारा सहित मधेशक हरेक जिला में पेयजल संकट और गंभीर बन सकबाक चेतावनी देल गेल अछि। स्थानीयवासी सेहो सरकार दीर्घकालीन योजना आनिक भूमिगत जल स्रोत संरक्षण तथा पानि के पुनर्भरण के कार्यक्रम प्रभावकारी रूप में संचालन कयल जेबाक मांग कऽ रहल अछि। धान रोपाई के मुख्य सीजन शुरू भेल एम्हर महतरी जिला किसान सब मल गुणस्तरीय बीज सिंचाई सुविधा तथा कृषि पूर्वाधारक अभावक कारण गंभीर समस्या में पड़ल अछि। आवश्यक कृषि सामग्री समय में उपलब्ध नहीं भेला सँ खेती पाती प्रभावित होबाक आ एहि वर्ष धान उत्पादन में सेहो उल्लेख्य गिरावट आबि सकबाक किसान सबक चिंता अछि। महतरी जिलाक औढ़ी गौशाला बर्दिवास बलवा लोहरपट्टी जलेश्वर मटिहानी सहितक क्षेत्र में किसान सब धान रोपाई तथा नर्सरी तैयारी में व्यस्त रहल अछि। रासायनिक मलक आपूर्ति सहज नहीं भेला सँ किसान सब निजी बाजार सँ अधिक मूल्य में मल खरीद करबाक लेल बाध्य बनल अछि। सरकारी अनुदान में उपलब्ध हेबाक यूरिया तथा डीएपी मल पर्याप्त नहीं भेला सँ बाजार में अभावक संग मूल्य वृद्धि सेहो देखल गेल अछि। किसानक अनुसार गुणस्तरीय बीज के अभाव सँ उत्पादन क्षमता में प्रत्यक्ष असर पड़बाक अवस्था बनल अछि। पर्याप्त वर्षा नहि भेला सँ नहर प्रणाली सँ पानि आपूर्ति नहि भऽ सकब संग विद्युत आपूर्ति में देखल गेल अनियमितता आ कम वोल्टेज के कारण बोरिंग तथा ट्यूबवेल संचालन सेहो प्रभावित भेल अछि। वैकल्पिक रूप में डीजल पंप सेट प्रयोग कयल जेबाक वार्ता सँ उत्पादन लागत सेहो उल्लेख्य रूप में वृद्धि भेल किसान के कथन अछि। सिंचाई के मुख्य स्रोत अवरुद्ध भेला सँ खेत में लगाओल गेल बाली सूख लागल पानिक अभाव और गहरित गेल किसान सब बतबैत अछि। तीन तहक सरकार मध्य निकट के सरकार स्थानीय सरकार भेलाक बावजूदो समस्या समाधान दिस ठोस पहल नहि भेल किसान सबक शिकायत रहल अछि। किसानक अनुसार समय में आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध नहि भेला सँ एहि वर्ष धान उत्पादन में भारी गिरावट अयबाक जोखिम रहल अछि। कृषि ज्ञान केंद्र महतरी जिला में मल बीज सिंचाई संबंधी समस्या भेल स्वीकार करैत संबंधित निकाय सँ समन्वय का आपूर्ति सहज बनेबाक लेल पहल भ रहल जनौलक अछि। रोहतक के वन क्षेत्र में काठ तस्करी नियंत्रण के लिए खटल गश्ती टोली पर आक्रमण कैल आरोप में एक गोटे के प्रहरी पकड़लक अछि। गुजरात नगर पालिका वार्ड नंबर 2 मैरा निवासी 26 वर्षीय राजकिशोर साह के इलाका प्रहरी कार्यालय चंदीगापुर आ प्रहरी चौकी बीरगंज वीरता के संयुक्त टोली शनि दिन राति बीरगंज सँ पकड़ल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय रोहतक जनौलक अछि घटना पश्चात फरार रहल शाह बीरगंज क्षेत्र में नुका छिपा कर रहित आयल अवस्था में पकड़ल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय रोहतक के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी बसंत गौतम के अनुसार पकड़ल गेल शाह के इलाका प्रहरी कार्यालय चंदीगापुर के हिरासत में रखकर थप अनुसंधान भ रहल अछि। सहायक वन अधिकृत राजकुमार चौधरी के जाहिरी के आधार पर राजकिशोर शाह सहितक व्यक्ति विरुद्ध जान मारवला उद्योग संबंधी मुद्दा दर्ता भेल छल। वही मुद्दा में जिला अदालत पकड़ा पुर्जी जारी भेलाक बाद प्रहरी उनका खोजी तीव्र बनौने छल। बीतल जेठ 19 गते मध्य रात काठ चोरी भ रहल सूचना पश्चात डिवीजन वन कार्यालय आ रंगपुर साहेदारी वन उपभोक्ता समितिक संयुक्त गश्ती टोली जंगल क्षेत्र में पहुंचल छल। गश्ती के क्रम में राजकिशोर शाह सहितक समूह टोली पर आक्रमण कैल आरोप लगौलक अछि। ओहि आक्रमण में सहायक वन अधिकृत राजकुमार चौधरी वन रक्षक सुरेंद्र चौधरी उपभोक्ता समितिक सदस्य अर्जुन चौधरी विमल थापा तथा चालक अरविंद पटेल घायल भेल छल। वन क्षेत्र में बढ़ित गेल कार तस्करी नियंत्रण के लेल खटल कर्मचारी ऊपर आक्रमण भेलाक बाद सुरक्षा व्यवस्था प्रति अभिरुचि बढ़ल अछि। घटना में संलग्न अन्य फरार व्यक्ति के खोजी तथा अनुसंधान के तीव्र बनाओल गेल प्रहरी जनौलक अछि। वन्य जंतु अपराध नियंत्रण तथा मानव वन्य जंतु द्वंद न्यूनीकरण संबंधी अभिमुखीकरण गोष्ठी सिमरा में संपन्न भेल अछि। डिवीजन वन कार्यालय बाराक आयोजन तथा तराई भू परिधि तथा संरक्षण कार्यक्रम के सहयोग में कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। कार्यक्रम में डिवीजन वन कार्यालय बाराक वन अधिकृत ललन राउत अधिकृत संजय चौधरी अधिकृत बादल रंजन नीरज पोखरेल सहजीकरण करित वन्य जंतु संरक्षण वन अपराध नियंत्रण तथा मानव आ वन्य जंतु बीचक सहअस्तित्व कायम करबाक लेल आवश्यक उपाय संबंध में प्रशिक्षण देने छलथि। अभिमुखीकरण में वन तथा वन्य जंतु संबंधी विद्यमान आइन कानून अपराध में होवला दंड सजाए वन्य जंतु से होवला क्षतिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करवाक प्रक्रिया वन संरक्षण के उपाय तथा सामुदायिक साझेदारी वनक महत्व प्रकार आ विशेषता संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान कैल कार्यक्रम संयोजक कवन अधिकृत वर्षालम
जानकारी देलनि। प्रशिक्षकसँ वनजन्तुक अवैध शिकार, तस्करी तथा वन विनाशक गतिविधिसँ जैविक विविधता संरक्षणमे गम्भीर असर पड़लाक कारणे एहन अपराध नियन्त्रणमे समुदायक सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहल बतौलनि। सङ्गहि वनजन्तुक प्राकृतिक वासस्थान संरक्षण कऽ सकला पर मानव वनजन्तु द्वन्द न्यूनीकरण करबामे सहयोग पहुँचबाक धारणा व्यक्त कयलनि। कार्यक्रममे सहभागीसभ पछिला समय बाघ, चितुआ, हाथी, बाँदर तथा अन्य वनजन्तु सङ्ग होबयवला द्वन्द के घटना संबंध में जिज्ञासा रखने छल। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत की 3 दिवसीय यात्रा पूरी कर लौटे स्वदेश। नेपाल भारत सीमा विवाद को कूटनीतिक माध्यम से समाधान करने को लेकर नेपाल को बताया प्रतिबद्ध। अंतरव्यवस्थापिका मंच का 11वां सम्मेलन 9 सूत्रीय संदेश पत्र जारी करते हुए कैलाली के टीकापुर में हुआ संपन्न। हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत दांग बांके और बर्दिया खंड में लगभग 36 किलोमीटर सड़क विस्तार कार्य हुआ शुरू। और अमेरिका के परमाणु निरस्त्रीकरण के आग्रह को उत्तर कोरिया ने किया अस्वीकार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि रामिछाने ने समसामयिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रासोपा के महामंत्री कविंद्र बोरला कोटी के अनुसार बैठक कल सुबह 9 बजे सिंह दरबार स्थित संघीय संसद सचिवालय के अंतर्गत सार्वजनिक लेखा समिति के सभा कक्ष में आयोजित होगी। बैठक में प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों से पार्टी अध्यक्ष अथवा सभापति सहित 2-2 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। महामंत्री बोरला कोटी ने बताया कि सर्वदलीय बैठक की सूचना और आमंत्रण पत्र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों को भेज दिए गए हैं। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत की 3 दिवसीय औपचारिक यात्रा पूरी कर आज स्वदेश लौट आए हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण पर वे शुक्रवार को नई दिल्ली गए थे। यात्रा के दौरान मंत्री खनाल ने शनिवार को अपने भारतीय समकक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता में विकास सहयोग, संपर्क नेटवर्क विस्तार, व्यापार एवं पारवहन, ऊर्जा तथा जनस्तरीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली प्रवास के दौरान मंत्री खनाल ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख डॉ विजय चौधरी वाले से अलग अलग मुलाकात भी की। स्वदेश लौटने से पहले नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री खनाल ने कहा कि नेपाल भारत के बीच सीमा संबंधी समस्याओं का समाधान वार्ता और कूटनीतिक माध्यमों से करने के लिए नेपाल तैयार है। उन्होंने दोहराया कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी नेपाली भूमि है और इस संबंध में नेपाल अपनी आधिकारिक धारणा भारत और चीन के समक्ष स्पष्ट कर चुका है। सुदूर पश्चिम प्रदेश के टीकापुर में आयोजित अंतरव्यवस्थापिका मंच का 11वां सम्मेलन 9 सूत्रीय संदेश पत्र जारी करते हुए संपन्न हुआ है। सम्मेलन ने सभी प्रांतीय सभाओं में डिजिटल संसद प्रणाली स्थापित करने, अंतरव्यवस्थापिका मंच के सचिवालय का संचालन संघीय संसद सचिवालय के अंतर्गत प्रांतीय सभा संपर्क एवं समन्वय शाखा के माध्यम से करने, क्षमता विकास के लिए विधायिका प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु विशेष पहल करने और संसदीय बजट कार्यालय स्थापना प्रक्रिया को आगे बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण संदेश जारी किए हैं। समापन समारोह में सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने जनप्रतिनिधियों से जनता के विश्वास और अपेक्षाओं के अनुरूप ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रांतीय सभाओं के बीच समन्वय, अनुभवों का आदान प्रदान और सहयोग आवश्यक है। सभामुख अर्याल ने संसदीय कार्य को प्रभावी बनाने के लिए समय प्रबंधन, डिजिटल प्रणाली के उपयोग और विषय केंद्रित चर्चा की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सम्मेलन में संघीयता के क्रियान्वयन के दौरान संघीय संसद और प्रांतीय सभाओं द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति, प्रांतीय सभा संचालन की प्रक्रियाएं एवं पूर्व सम्मेलनों के निर्णयों के क्रियान्वयन की स्थिति, आगामी कार्यदिशा और संभावित निर्णयों पर चर्चा हुई। संविधान द्वारा परिकल्पित संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की भावना को आत्मसात करते हुए संघ, प्रदेश और स्थानीय स्तर पर कानून निर्माण तथा विधायी प्रक्रियाओं को सहयोग, समन्वय और सह अस्तित्व के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कैलाली के टीकापुर में ये 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। हुलाकी राजमार्ग निदेशालय योजना कार्यालय नेपालगंज के अनुसार बांके जिले की राप्ती सुनारी ग्रामीण नगरपालिका 3 स्थित नारायणपुर से दांग की सीमा पर स्थित कुसुमपारी भवानीपुर तक हुलाकी सड़क का विस्तार किया जाएगा। कार्यालय प्रमुख लीला बहादुर भंडारी ने बताया कि दांग, बांके और बर्दिया खंड में कुल 75 किलोमीटर सड़क में से लगभग 36 किलोमीटर मार्ग का ट्रैक खोलना बाकी है और इस मार्ग पर लगभग 20 पुलों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि दांग खंड में 22 किलोमीटर सड़क और 17 पुलों के निर्माण के लिए 2.9 अरब रुपए की वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उनके अनुसार परियोजना के तहत अगले 3 वर्षों में दांग, बांके और बर्दिया में काम पूरा हो जाएगा और ये सड़क महेंद्र राजमार्ग के वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम करेगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता ने कहा है कि सरकार समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए विशेष प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। आज मंत्रालय में पत्रकारों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में मंत्री मेहता ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूद समस्याओं, उनके समाधान के प्रयासों और आगामी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने 100 दिन के सुशासन एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है और इससे जुड़े काम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। मंत्री मेहता ने यह भी बताया कि नियमित समन्वय, सूचना और संचार के माध्यम से मंत्रालय की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस वर्ष भी सुरक्षित खाद्य पदार्थों के महत्व और खाद्य जनित रोगों की रोकथाम के बारे में जनचेतना बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दूषित खाद्य पदार्थों के कारण हर वर्ष लगभग 60 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं और करीब 4,20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन से लेकर उपभोग तक हर चरण में सुरक्षा मानकों का पालन करने से खाद्य जनित रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है के संदेश के साथ मनाए गए इस दिवस पर सुरक्षित, पौष्टिक और स्वच्छ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों की साझा जिम्मेदारी पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का जिला अधिवेशन आज 28 जिलों में आयोजित हो रहा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख भुवन केसी के अनुसार कोशी प्रदेश के 4, मधेश के 4, बागमती के 2, गंडकी के 4, लुम्बिनी के 3, कर्णाली के 6 और सुदूर पश्चिम के 5 जिलों में अधिवेशन हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला अधिवेशनों की निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक जिले में 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति तैनात की गई है। रासोपा इससे पहले 38 जिलों में अधिवेशन संपन्न कर चुकी है। पार्टी की योजना प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन से पहले 77 में से 67 जिलों में अधिवेशन पूरा करने की है, जबकि शेष 10 जिलों में अधिवेशन राष्ट्रीय महाधिवेशन के बाद होंगे। रासोपा का प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन आगामी 7-9 आषाढ़ तक चितवन में आयोजित होगा। निजामती कर्मचारी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं कल सोमवार से चितवन के भरतपुर अस्पताल तथा परसा के वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल से भी उपलब्ध होंगी। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने आज सूचना जारी कर बताया कि काठमांडू स्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल द्वारा सरकारी कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली छूट एवं रियायत सहित स्वास्थ्य उपचार सेवाएं प्रारंभिक चरण में भरतपुर और नारायणी अस्पताल में भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सूचना के अनुसार सेवा प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निजामती कर्मचारी अस्पताल द्वारा जारी आधिकारिक परिचय पत्र साथ ले जाना होगा। मंत्रालय ने बताया कि सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सरल, सुलभ और सुलभ पहुंच के साथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अस्पताल की सेवाओं का प्रांतीय स्तर तक विस्तार करने की सरकारी नीति के अनुरूप ये व्यवस्था लागू की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को और मजबूत बनाने की घोषणा करते हुए अमेरिका की परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग को खारिज कर दिया है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अमेरिकी प्रस्ताव को पुराना और अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि उनका देश अपने परमाणु शस्त्रागार को लगातार सुदृढ़ करता रहेगा। उन्होंने अमेरिका के उस दावे का भी खंडन किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत हैं। उत्तर कोरिया का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु क्षमता बढ़ाने की नीति से पीछे नहीं हटेगा। वर्ष 2019 में ट्रंप और किम जोंग उनके बीच वार्ता विफल होने के बाद उत्तर कोरिया ने अपने हथियार कार्यक्रम को और तेज कर दिया था। हाल ही में किम जोंग उन ने परमाणु सामग्री उत्पादन संयंत्र और एक हथियार कारखाने का निरीक्षण कर मिसाइल उत्पादन क्षमता में 2.5 गुना वृद्धि करने का निर्देश दिया है। इस बयान से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत की 3 दिवसीय यात्रा पूरी कर लौटे स्वदेश। नेपाल भारत सीमा विवाद को कूटनीतिक माध्यम से समाधान करने को लेकर नेपाल को बताया प्रतिबद्ध। अंतर व्यवस्थापिका मंच का 11वां सम्मेलन 9 सूत्रीय संदेश पत्र जारी करते हुए कैलाली के टीकापुर में हुआ संपन्न। हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत दांग बांके और बर्दिया खंड में लगभग 36 किलोमीटर सड़क विस्तार कार्य हुआ शुरू। और अमेरिका के परमाणु निरस्त्रीकरण के आग्रह को उत्तर कोरिया ने किया अस्वीकार। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: फोर जी LTE मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।